Assalamualaikum, saya Ustaz Taha. हिंदी में कहा जाता है, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. Artinya kalau kita nak satu benda tu betul-betul, maka Allah Taala akan bantu kita untuk dapatkannya. Dengarkan Salam FM.

Assalamualaikum, saya Ustaz Taha. हिंदी में कहा जाता है, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. Artinya kalau kita nak satu benda tu betul-betul, maka Allah Taala akan bantu kita untuk dapatkannya. Dengarkan Salam FM.